संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादाद सांदेकर।

संत तुकाराम की ये भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबनीस और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: मोहम्मद सारंग, खयाल विलंबित तेंताल मोरा रंगीला, ध्रुत तेंताल रंग दे।
1: लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय पंडित प्रभाकर कारेकर, राग मदमात सारंग। ख्याल विलंबित तीन ताल मोरे रंगीला, ध्रुत तीन ताल रंग दे रंग दे।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन. आज के कलाकार हैं सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन, कलाकार सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen to a flute recital in the rag Gurjari Todi. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla is Debashish Sarkar. Listen to rag Gurjari Todi on the flute. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में गिटार वादन। कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं परिमल चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं राग भाटियार में गिटार वादन, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन द राग गुर्जारी टोडी। आवर आर्टिस्ट वॉज सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। Accompanying him on the tabla was Debashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Porimal Chakraborty. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कला है पुष्कर लेले। आपने प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी, सुनते हैं विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के घूंगरिया, और द तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के शोभा। साथ संगत हारमोनियम राजीव तांबे, तबला विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं राग दास खनी तोड़ी, कलाकार पुष्कर लेले।

अभी आप सुन रहे थे राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजू तांबे, तबले पर थे विकास पुरंदरे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पुष्कर लेले द्वारा प्रस्तुत राग नट भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मान अब मोरे बालम, और द्रुत तीताल में निबद्ध रचना के बोल है सुजान करिए। साथ संगत हारमोनियम सुरेश फड़तरे और तबला माधव मोड़क। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव, कलाकार पुष्कर लेले।

अभी आपने सुना राग नटभैरव, कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे सुरेश फड़तरे और तबले पर थे माधव मोड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का शास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. In the program of light music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Savre Salone More Sham, is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वाह सजन।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वाह सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं नाही बड़े मोसे चैन। तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर नाही पड़े मौसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खां ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कम्पोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है राग लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास धू का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु गाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत अली खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है अपर्णा केड़कर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग अहिर भैरव सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है तेरो जिया सुख पावे और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है अलबेला साजन आयोरे। सात संगत हारमोनियम शुभांगी भवसर और तबला माथव मुड़। तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव, कलाकार अपर्णा केड़कर।

अभी आप सुन रहे थे अपर्णा केळकर द्वारा प्रस्तुत राग अहिर भैरव, और अब सुनते हैं राग भटियार, कलाकार अपर्णा केळकर। विलंबित रूपक में निबद्ध रचना के बोल है उचट गई, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मारो कंठा विदेशा। साथ संगत तबला रघुराज तुळशागवाले और हारमोनियम शरद सिद्धये। तो आइए सुनते हैं राग भटियार, कलाकार अपर्णा केळकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अपर्णा केळ द्वारा प्रस्तुत राग भटियार। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसीबाग वाले, हारमोनियम पर शरद सिथैये। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। राग हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौस पर शहनाई वादन. कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय.
2: दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ शहनाई रिसाइटल इन द राग माल कौस. Our artist this evening is Gohar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मालकोंस पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन। कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Shehnai recital in the Raag Hansadhwani. Our artist was Gauhar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Rag 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गिरिराज. राग है बसंत मुखारी. इसमें आप आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें सुनेंगे तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द कंपनीइंग आर्टिस्ट इज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन तक में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to Hindustani Sitar Recital by Pandit Giriraj. This is Ragam, 24/7 DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द अकंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। राग है नट भैरव, जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खान। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला।

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Bihag by Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by vilambit and drutgat set to teen taal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है फियुद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द एकॉम्पैनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफियुद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगावकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।
1: जय जय।

दी आंख कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावड़ीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावडीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।

माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निलोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।